सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Knowledge.

Você.

ऐसे नहीं, युग में जीवन मुक्ति मिलेंगी। अभी भी इस संगम के जीवन में

Sí.

Creepy Batman. Sarabi. Mokasene. Legend Sarabi.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है।
1: अनुभव करेंगे पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ये फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो न सुनो न बोलो न सोचो, और मांगो उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादियाँ स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ASMR.

जहाँ प्राप्तियाँ होती।

0: ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कलप में
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Amen.

कुछ नहीं मांगा।

you

कृष्णा, इसी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते वह कभी मन आपका मालिक होता।

0: 觉得
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

そっとした国家便ね以上な。カインポチゲー

ようか。

Sim.

पता नहीं बनेगी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ए बड़ा को सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक समय एक और चारों और देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम। लक्ष्य को अनुभव बनाने का सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके। आप लोग भी पाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का आचान करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही हुई।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए शारत के प्रालंबित स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है। बनेंगे प्रालंबित वाले, बनेंगे। हाथ उठाओ, हाथ घुमाओ। अभी पुरुषार्थ

0: checan. Oye, Femri Shanting. Oye, Rem del Bana. Oye. Conozca a
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तीन मास का अभ्यास, सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया, तीन मास पास करने फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बचपोड़ी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा, रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है, वो फोटो अपने साथ रखेंगे या कागज का रखेंगे या दिल का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी, जितने भी आपके सेवा साथी हैं, सिक्किया भी देते हो तो सिक्किया के साथ सने भी देना, जिससे वो सने के आधार से अपने को आगे बढ़ा सके। ऐसा सने नहीं देना जो वो सने का लाभ उठावे, जो भी करो फिर ऐसा सने नहीं देना। बाप दादा खुश है जो निमित बने हैं, अटेंशन देते भी हैं, लेकिन और अटेंशन देंगे, संतुष्ट भी करो और विश्व को संतुष्टि का किरणाएं पहुंचे, ये भी कार्य निमित्त वालों को करना है। उसका कारण कि जो निमित्त है अपने हैंड्स के संस्कार परिवर्तन कराने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। सेवा कराते हो, रहने खाने का प्रबंध मेजॉरिटी सेंटर देती, लेकिन औरों में शक्ति ऐसी बढ़ो जो बाप से शक्ति ले आपके सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाए जो भी आवे वो पहले तो वायुमंडल के आकर्षण में आ जाए। क्योंकि आजकल सब यही चाहते हैं कि ऐसे कोई कार्य हो पर्स का वायुमंडल बदलेंगे तब संसार का वायुमंडल बदलेगा। निमित्त आपके अस्तान सेवा स्थान पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को और पावरफुल बनाओ। जिसको देखे लोग शिकल से वाइब्रेशन से जान जाती है आजकल।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुमारियाँ क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में साथ में बिठाए। नौकरी नौकरी करनी भी पड़ती है, तो भी बाप दादा कहते हैं अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है कुमारियों को, तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है तो सेंटर पर रहना है। सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, तो थोड़ा हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमटेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार, इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, बोली वाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहे। सिर्फ नौकरी नहीं, स्व उन्नति में अपने सरकमटेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किट-किट वाले नहीं बनना। योग्य टीचर अच्छा तो ऐसी कुमारियां बनेंगी। हाँ तो रहो एडजस्ट होने वाली सोच के हाथ उठाओ। अच्छा इंग्लिश नहीं जानते, सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले, निर्विघ्न बन सकते हैं। अभी हैंड्स की कमी है, बाप दादा सभी को कह रहे हैं कुमारियों को।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही तो पेपर का तो चलेगा। सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओमंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होंगे, फिर आपको अखबार में नहीं के पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे टीवी में, दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

máscara de oro.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो आर्डर करो वही करे, अभ्यास करते हो कभी कभी नहीं भी करते।

0: जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरे कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो।
1: Yeah.
0: शरद संकल्प समय पर समय आते नहीं चाहते हैं तो भी आते, तो क्या मालिक कहेंगे?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Прости.

Hit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Dusky, light or white? To Anbhavi Swaroop ka arti hai kya ne to atma ke har karam mein light or might natural hona chahiye. और सफल होंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभव ही मूर्त है. अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ. ज्ञान को स्वरूप है. चेक करो चार ही सब्जेक्ट में आत्मा हो लेकिन अनुभवी स्वरूप होगी.

0: सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के साथ
1: attention.

सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्वपरिवर्तन से विश्व की

समाचार आते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास, क्योंकि साकार में तो दादियां है, बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। संकल्प पहुंचता है, मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते हैं, हे अर्जुन, some

Sub-summer.

जीवन मुक्त, ब्रह्मांड जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीवन मुक्त।

श्रेष्ठाचार

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सबसे महान

never.

माया हार खाती।

जय माया, जय प्रकृति।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती, देखनी पड़ती। एकदम बड़ी दिलो सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार एक मत हो के चलना है, चलाना है, सिर्फ चलना नहीं चलाना भी। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रही है कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं

0: 7 में 7 इतने नहीं है, लेकिन समझ लो तो बाप दादा तो सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता मीठे मीठे जानता है खट्टे भी है। लेकिन मीठे खट्टे कभी याद में कहा है उन्हों को भी लाडले कहते हैं। नसरत कहता है लेकिन मेरा बच्चा मेरे पाँव से चलाता है क्योंकि बता दिया कि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है। ये रिजल्ट है संस्कार बिना बिना होते हैं, होना है नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज किस पर करेंगे, अच्छी प्रजा भी तो चाहिए ना, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करे, परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है लेकिन मेरा संस्कार क्या, अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं तो खराब का हो गया जो अच्छे को भी बदल लेता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने का ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो ये ड्रिल कोई कह समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझिए उठेंगे ना। तो ये एक मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर, उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। कहीं समझते हैं ना, समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। इसलिए
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है।

मास्टर दादा पढ़ने के बिना नहीं रहे, क्योंकि

Majority.

0: hay menos que ocupar.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज की बात व्यर्थ संकल्प के समापति की बोल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीवर पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं, ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के वृत्त कोई भी और भावना नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: fortsätter känner det i och det
1: Awesome.

साधारण पुरुषार्थ में रहे। एक घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखदे वो एक घंटा का साधारण पुरुषार्थ।

Shadadiri Halchal.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मालिक सदा मालिक होता है।
2: कितने वर्षों से जुड़ा
1: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
2: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो अभी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। तो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? देखो, इसके भी विधि बताते। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई पाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है, और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास कि वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की, गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। बाप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाए। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 100, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवरेडी नहीं भी बनो, लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं एवरेडी को। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत देखिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Lost.

美味しい。

ஒரு சங்கல்ப பணத்தில் மேகணும். Check.

首歌。

Puppy.

supposed to

रिजल्ट देखो जो संकल्प किया वो कहां तक पूरा हुआ। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई पहले उमंग बहुत होता है, पीछे थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता। सर्वशक्तिवान है, साधारण

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। और शरद के प्रारब्ध का अनुभव अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषारत की तीवर पुरुषार्थ सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देवता देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ it।

0: yo sé cara. Dos rines shanie. Divar por sharatki. Sada. Nirman. Kaya.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

से असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है? तो वो भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसके अंतुष्ट असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना शुभ

अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और पाप का प्यारा Sous-titrage Société Radio-Canada।

It's so

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक बाप दादा को अल्लापेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, और दिल खुश बड़ी दिल होती है। दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना। उमंग उत्साह में सदा उड़ती रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब कंबाइंड है सर्वशक्तिवान बाप दादा, कंबाइंड है फिर अकेले क्यों बन जाते? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्ति
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्ला

Rettung. Ashanti. Du fremdel.

भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए, सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा

Sí.

अभी को मुक्ति में भेज। आप बाप के वरदान से राजद गरीब

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? क्या करेगा? बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपने पांव में समा दे। बड़ी बड़ी बाकी आपको महसूस बाकी मिलेगी और साथ साथ ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ प्यार है बहुत, तो बाकी के साथ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्यारे प्यारे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं। सुंदर दृश्य आपने

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा, ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकते।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज क्या करेंगे? शिवा का खाता बनाओ, तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज। इसमें मजा नहीं है, ब्रह्मांड जीवन है, मजे की संगम युग है, मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा, ब्रह्मांड जीवन अर्थात वाह वाह है न शरीर व्याधि में भी आए वाह, ये भी बहुत उतरता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

भगवान को। सदा सफलता स्वरूप बनाना है, सफलता स्वरूप है, सफलता हमारे जन्म का वरदान है, उस समृद्धि से तो सफलता सदा एक एक बच्चे के साथ है। सिर्फ उसको प्रैक्टिकल में लाना है। ही सफलता स्वरूप ही सफलता।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just

Sim.

0: मुझे खाता जमा करने का और परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है हर सोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य प्रोग्रेस कितने की और संगठन या परिवार के सने समीपता का कितना अनुभव किया, ये तीन ही बातों का रिजल्ट
1: बनो। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होंगी सोचो।

Maximum.

personal.

Hit check.

0: सुख लेना दुख नहीं लेना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे वो माइक माना जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसी भी रीति से बेहतर को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Shh.

और

cosa terra. Cosa terra. Così. Chi fisiste? See.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना, और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आशा कि चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: उसमें भी ये विशेषता है।

0: प्राप्त करते
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण अज्ञान ने आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो, वो है
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी वर्तमान

Rússia.

ASMR me.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Oh, shit.

0: Parano. चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वो आपके चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक है, कि साधारण समझते हैं ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है, एक बुक निकलता है ना जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गए। लेकिन जिन्होंने भी उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपके प्रैक्टिकल चलन में चेंज देंगे। ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मुहूर्त है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और जलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन सफलता भी पाई। ऐसे ही

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होता। अगर रोज विधि पूर्वक बोली पढ़ते हैं तो एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना, मिलती है याद प्यार, मिलती है रोज, मिलती है सभी को, मिलती है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहाँ पहुंच नहीं पाते क्यों? के वायुमंडल की ब्रांचिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप जल्द से जल्द बच्चों अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: falare deste Yegia. Forni announcement karne lag jati. To bab dada puchti aap brahmanon ne apna karya kiya. Aapko bhi alert hona chahiye. ये भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्रह्मांड आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेफिक्र मत चल,
2: बेफिक्र
1: फिक्र बैठ कारण क्या है, बेफिक्र क्यों है,
2: कल क्या है, ये फिक्र क्यों है।
1: दिल बड़ी है बेफिक्र क्यों है, क्योंकि दिल बड़ी है।
3: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता
1: है। तो दिल बड़ी कैसे हुई है? बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक बात, बाप दादा ने suck.

下一题。

Man sabe, baby.

主人。

Yo, madre mía. Jesse, prem, chariot, que ocupar.

problema.

कर देंगे सामने नहीं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते अपने जानते भी।

Stiddy. Ciao.

किसको नहीं प्राप्त होता।

कितना भी सारे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ समझे। बचाओ समय को, संकल्प को, जितना अभी बचत करेंगे जमा करेंगे तो सारा कलंब उसी परमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना के अगर मानो आपका आज का दिन जमा कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना, ओके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करें। अपने को उमंग उत्साह मिलाओ, अपने आप से रेस करो दूसरे से, अपने आप से रेस करो कि आज अगर जमा हुए तो कल 10 घंटे दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी समय है जमा कर। अभी ढूले बोल नहीं लगा, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पूछा रहती क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पूछा रत में आगे बढ़ते, तो ऐसा होगा।

Dios.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इमर्ज हो जाते हैं तो अच्छा लगता है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा, वाचा सेवा।

las han hecho por puro tiempo.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो कौन सा होगा? दो शब्द और है भी इंग्लिश, कंपेनियन और कंपनी। पसंद है डबल फॉरेनर्स? पसंद है ये दोनों? एक हाथ उठाओ अगर पसंद है तो, एक हाथ उठाओ। अच्छा, भारत वालों को पसंद है? पसंद है, पसंद। पीछे वालों को पसंद है? पसंद है। अच्छा, कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते।
2: So

सभी बच्चों को रिवाइज करा रही है। किस्सा

Sa.

observas a Mandir. Jessa!

Adiós.

Sad for some.

人归，杀掉给的人。Ah!

He does.

Why wake up in a good mood?

Sai.

Exacto.

角。Come back.

Вас обостил, полите по барабану.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी।

What's up?

Push.

0: उसके लिए
1: थैंक्स। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए। पाप का भी आप सब में निश्चय, अपना बनाए। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की, तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर हो के नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार करना।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर। मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Exacto.

माँ-बाप को देखा, जब भी कोई बच्चा आने ने थोड़ा हलचल में वह शरीर हिसाब किताब में रहा। साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया।

सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाए। इसलिए बाप दादा पहले से ही

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा फेरत संकल्पों की सभापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से फेरत को सभापत कर सदा समृद्ध बन समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाती है, समय बर्बाद करती है, चेहरे पर सदा खुश नमा खुश किस्मत का अनुभव कम कराता है। इसलिए अब इस समापति का समय लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, पाए का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सकते हो। एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास होगा, बार बार का अभ्यास, I'm sorry.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: टाइटल दे रहा

0: इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना, दीवार पुरुषा रहती हूँ। ठीक है, सभी को मंजूर है, मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसीलिए अभी तीव्र पुरुषार्थ बढ़ना ही है। समय की पुकार तीव्र पुरुषार्थ
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया, बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा से, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ा। लास्ट बच्चे से भी

0: Jacobin, Pop Dada, Shejete, Xadjel, Red Ranger, Piche Piche, Nairedje.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी अभी आज के दिन चेक करो, मैं कौन, मैं फ्रिस्ता, यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी दे। Just shut.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: और स्व की संतुष्टता। अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, किसी

0: stressante. इसलिए जमा का खाता कम हो जाता, जमा के खाते की चाबी है बहुत सहज डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो लेकिन डायमंड चाबी और हर dice, si va a carnevalica, llama cacata que se porta ya.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

sé que ama el té. Guarda. Tu corbar, Kitten. Fortan Katten Fischige. Isar Upsi. Corbar Comanao. Koi da koi. Fishes for Dan. Amrit Vele se. Apane. Boti me emerge rakho. For Dan to anege. Lekin fishes. एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदान ही दिन में वरदान स्वरूप बन वरदान को रिपीट नहीं करना है लेकिन वरदान स्वरूप बनना है और चेक करते रहो तो आज समय वरदान स्वरूप रहे संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है तो संडे के दिन मनाओ जो भी कुछ अपने जीवन में सोडियो स्वपन मात्र भी कोई कमजोरी

0: Jesse Appleby. It don't me. Fishes. सिर्फ लक्ष्य नहीं, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक तो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना। ऐसे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिमान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो मास्टर सर्वशक्ति क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, आर्डर करो। हर शक्ति को समय पर आर्डर करो, वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आते। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दिल में चंदा तो लहरा लिया और कमरे का चंदा भी लहरा लिया जगह जगह पर। अभी पार्थक्यता का चंदा जल्दी से जल्दी लहरा यही फिर से लो दृढ़ प्रतिज्ञा का फिर से लो के जल्दी से जल्दी ये झंडा नाम बाला का लहरा नहीं है। अभी तो की दुनिया को मुक्ति धाम में जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना तो रहम करो। अब तो कसे चुराओ जो पाप का वर्षा है मुक्ति का वो सबको दिलाओ। क्योंकि परेशान बहुत है शान में हो वो परेशान
4: आत्मा को आप शान में लाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah. समय परमान पाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं, जीवन नेचुरल और सदा काल की होती, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनाओ जो लक्ष्य योगी जीवन का, जो लक्ष्य अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट। खुद को भी अनुभव, खुद भी उस स्वरूप स्वरूप स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप और स्मृति स्वरूप है या नहीं उनका प्रमाण ये कि जहां स्मृति अनुभवी स्वरूप है वह अपने में समर्थि हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी, कार्य भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अनुभव
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्राह्मण जीवन अर्थात कोशिकी जीवन, कभी कभी बाप दादा देख कोई कोई के चेहरे जो होते है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानती है तभी हंसती है। Maya.

0: funziona. Eh sì. Maiaki bi poro birubaki pechal. Knowledge.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब मुझे सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते थे, दूर से ही दरवाजा बंद कर देते थे। सफेद साड़ी ग्रस्तों को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की उनके पोस्ट बॉक्स में डालना थी, क्योंकि पोस्ट तो निकालेंगे तो पोस्ट में कईयों को संदेश मिल जाता था। पहले पहले सर्विस जब आरंभ हुई है तो बहुत मेहनत से शुरू।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे, एक विशेष जमा करो।

0: خسرا صدا संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं, करना भी, उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो, दुआएं का खाता, कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जाएंगे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामिक रामी नहीं सेवा दर्जी हो अच्छे, लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आखिरी हो। क्यों? कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोटिस है। और मांग के चांस लिया वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्स सुख्यम हिसाब किताब। इसीलिए निर्स्वार्थ सेवादारी, अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ। और दूसरा समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और योग्य भी है। अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया, लेकिन दिया किसको चांस तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा। क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है तो हिसाब किताब समझ लो, ऐसे अलग मिले नहीं चलो ठीक है हो गया दिन पूरा। बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब का चोपड़ा आपको कुछ करना नहीं पड़ता है ऑटोमेटिक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Se Chota.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा कितना वे आने का कारण थे अपमान का, मैं शब्द थे पान का, मैं एक है, मैं आत्मा हूँ ये मैं, लेकिन थे पान के मैं शब्द अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता। तो बाप दादा आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का शब्द को पका करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो चलाना है, क्योंकि ये भी तो भोज है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पदम पदम

0: अमृत वेले मुबारक लेते रहना और चारों ओर मुबारक देते रहना। ये तो लोगों को सेवा के अर्थ जहाँ तहाँ झंडा लहराती है तो उनके दिल में भी स्मृति आवे। मेरा बाप कौन पहचानते नहीं है ना, तो उनको पहचान के लिए झंडा लहराती है। बाकी आपके तो दिल में स्वयं बाप बैठे हैं। इसका यादगार या आपो में ही दिल वाला मंदिर। तो सभी को पदम पदम पदम गुना मुबारक है, मुबारक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Ciao.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

इस कभी कभी

Weak.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सर्विस साथी। सोचना अच्छा मैं आठ में तो ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाएगा तो 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं मंगावे। मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ, उसका आधार है

0: टेस्ट को खत्म कर, पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, वेस्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: ಓಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ
1: ಓಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ.
2: ಸೋ ಜಾಯೇ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yes, it is good, diferente. A cara que dice a big. Tu chapa a poco pasan de ella. Or a poco vos pas frutse a dia. Tu que a apa. Catichi saman que la queña. La queña. Coi. Coi piques com. Catichi bi. Agar coi carachis de bebe. Tokia karenge. Almari me saja ke rakhenge. Nahi. Nahi. Fen denge na. Uski fit se shikal bhi nahi dikhai de. Aisi fen ki. To ye wapas kyun milte kyun lete ye baap dada kehte hai wapas lo shri mat hai ye nahi hai na phir kyun milte वो तो वापस आएंगे क्योंकि उसका आपसे प्यार है लेकिन आपका प्यार नहीं है उसको आप अच्छे लगते हो और आपको वो अच्छा नहीं लगता तो क्या करना पड़े तो अभी आज कम से कम जब वर्ष 5000 वर्ष के लिए विदाई लेता है तो आप कम से कम ये छोटा सा ब्रह्मांड जन्म एक ही जन्म है ज्यादा नहीं है एक ही और उसमें भी कल का भरोसा वो 5000 की विदाई लेती है तो आप कम से कम एक जन्म के लिए तो विदाई दो दे सकते हो हाँ जी तुम करते हो लेकिन जिस समय वो वापस आती है ना तो सोचते हैं

0: va a iscar. Bar, bar va a iscar.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग जोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ के कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं दे। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए
1: बस। 10

0: निमित्त आप सब निमित्त बनी हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सरल हो जाएगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: से आप सबको मुबारक दे रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा विज्ञान, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस महीन होती जाती। ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हम जिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना है ना इन्हों को। साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है उसकी पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है तो साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सके। क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, बिजनेस भी होगा, लेकिन रिफाइंड रूप में होगा। अभी का विज्ञान की इन्वेंशन फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान है। ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी हैं, उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान कार्य करने में मददगार बनेंगे। तैयार करो इंजीनियर्स को। चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे, लेकिन रेगुलर नहीं बनेंगे, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती। संबंध में सहयोगी रहे, ऐसी आत्माएं भी तैयार करो।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: नंबर 1 पाई ब्रह्मा ने पाई ना,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है God is truth। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच्चाई होगी ना

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: बच्चों से, कभी भी दूर नहीं रह सकते। जैसे बच्चे बाप से दूर नहीं रह सकते, तो बाप भी बच्चों से
1: सभी बच्चों को देख
0: खुश है,
1: खुश
0: मुबारक भी देते
1: हैं
0: कि अभी हर एक समझे कि मैं इस
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते, और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृद्ध कैसी भी है, कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना, घृणा भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे, नहीं सुनाया ना अभी आवश्यकता है, रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते, तो आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है, शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, मालूम है, लेकिन उसी बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देगा, लेकिन फिर उसको बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है, और प्यार में गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाती।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जरूरियात में बहुत मीठी।

0: passate, proputine, 80 κοπολτσιαί, λίφτα κουλιάτκρι, πορσάτ κοπίκισκα, πορσναρκαία νίτζετα, προπού πορσάτ κοτζετα. बरसात नहीं कहा जाता, सहयोग मिलता है अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Dead butcher.

0: plástico que afuera cote me Ortega. Lequen. Fuera que te no
1: change me. सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Anne Boti. Anneke. Permatam kasaneke. Malik banane wali. Yeah.

Farewell. 'Cause I'm no kid.

Son.

विश्व परिवर्तक है, धंधा आपका क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे, कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना की गिफ्ट दो। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वो ही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक विश्व राज अधिकारी बनता है, इसलिए याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन।

0: reggae.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्यों के ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती। अगर ड्रामा में निश्चय तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय होती है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय किसके ऊपर विजय बनता, परिवर्तन करने में एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती, हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के से अटोल अचल बन जाते। ये निश्चय रहता है कि मैं कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना इस